0: ಮನ್ ಚಾಹೇಗಿ.
1: ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन. पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत. कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार. आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है. कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत. कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, आकाश कुमार और शिल्पा रानी, सुखजी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, विशाल, आरुषि, प्रियंका, ख्याति, शक्ति, ऋतिक, शौर्य, बसंती बाई और किशन लाल जी चौहान, रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि और शिवांग त्रिपाठी, मनु विजय मिश्रा, गोविंदा साहू, अमन पीए और गोविंद ओमर और अमरजीत सिंह सांगा, बेनीपट्टी मधु बनी बिहार से अरविंद कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, मनिया कुमारी और गुड़िया कुमारी, करीमनगर तेलंगाना से लक्ष्मी नारायणा, विजया अभिनय, साई किरण, शेखर श्रीनिवास और पन्ना वेंकटेश, एकलव्य नगर जिला रंगारेड्डी से सुषमा, बाबू अकेला और बिजली. तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में. गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है उपहार.

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है उषा खन्ना की और फिल्म का नाम है साजन की सहेली। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक, तेलीपाड़ा बिलासपुर से रजन साहू, बेबी ईशानी, अनीता श्रीवास और छन्नूलाल श्रीवास, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ बेमेतारा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी, महामाया पाड़ा ग्राम दरचौरा से फिरंता साहू और दोरोलीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमारी साहू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रौली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, ग्राम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नौसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलयाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की और

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी दोस्त। दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वद देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

साथियों, आप जो ख़त हमें लिखते हैं उसमें साफ साफ अक्षरों में लिखें ताकि आपका नाम पता और फरमाइशें पढ़ने में हमें आसानी हो। कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश सुनिए। आप सभी दोस्तों की पसंद पर पत्र लिखे हैं आपने जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजमा बेगम सिद्दीकी, मोहम्मद रिहान, रियाज, रिफाकत, समरीन, परवीन और माहिरा नूर। श्री केदारनाथ सोसाइटी से रवि भाई सिसोदिया, मुन्ना भाई सिसोदिया, गीता बा सिसोदिया, धर्मराज सिसोदिया, करदाराज सिसोदिया और समस्त सिसोदिया परिवार। गिरिराज सोसाइटी मोरबी गुजरात से आमिर आसिफ लाखानी, आसिम अजीम लाखानी और सानिया लाखानी। जूनागढ़ गुजरात से किरट सोलंकी और मिसेज सोलंकी और राजकोट से नीरव की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत। तर्ज है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है दोस्ती।

साथियों, आपको बता दें, आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मनचाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मनचाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चोगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या कर रही है? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। ला हौल वला
2: कुव्वत। नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: हला मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो, निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार, ये मैं मर गई। अल्लाह।
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची, क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी।
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नायाब बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
2: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
1: हमारे पैरों में क्या हो गया?
2: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
1: हमारे पैरों में दर्द नहीं
2: सरकार।
1: चल भाग यहाँ से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं, निकल हमारे कमरे से
2: सरकार।
1: अब जाती है के?
2: मुझे ना निकालिए सरकार।
1: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
2: मेरे अच्छे सरकार।
1: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
2: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं न धुतकारिए।
1: ओहो कैसी बातें कर रही है हलीमा।
2: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
1: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ हैं। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, पहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
2: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
1: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी, किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
2: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
1: कैसर नवाब?
2: जी, कैसर नवाब को मालूम नहीं कौन सी बीमारी है, सर से पैर तक सड़ रही हूँ।
1: मगर ये नहीं हो सकता।
2: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
1: नहीं ये हरगिज नहीं होगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
2: उनके हुक्म से तो नया बुबू ने मुझे भेजा है।
1: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
2: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी।
1: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
2: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बुबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
1: सरवरी को? ला हौल वला कुव्वत।
2: हाँ सरकार, बुबू मुझसे खफा नहीं, क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
1: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
2: नया बुबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
1: नहीं नहीं हलीमा छोड़ो।
2: मेरे नवाब।
1: हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। Get out, you

0: स्टूपिड गर्ल।
1: छोटे सरकार,
2: तुम मुझे गुनाह के घर में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ, गेट आउट। ओह माय गॉड, माय गॉड।
1: या अल्लाह।
3: अरे भाई जहांगीर साहब और छमनिया, अरे भाई क्या हाल चाल है?
4: आपकी दुआ है अफजल भाई।
3: अम्मा यार, क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
4: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है, कहिए क्या काम है?
3: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अम्मा अम्मा, ये क्या किस्सा है?
4: कौन सा किस्सा?
3: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
4: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
3: वजह?
4: मैं इसे बदकारी समझता
3: हूँ। ओहो, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
4: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
3: अमा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
4: अतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
3: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागलखाने पहुँचा दिए जाओगे।
4: ये घर कुछ पागलखाने से कम है, जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे हैं।
3: मैं हकीम साहब किबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
4: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है, इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
3: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
4: आप तशरीफ ले जाइए।
3: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
4: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
3: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छमन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं, बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलादे नरीना ना पैदा हुई।
4: औलादे नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
3: मगर बांदी से क्यों बिदकते हो? शादी वक्त आएगा, हो जाएगी।
4: और बांदी?
3: बांदी काम आएगी।
4: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगी।
3: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म और रिवाज को नहीं समझती हैं।
4: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना होगा?
3: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
4: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
3: अमा अजीब हवनक आदमी हो।
4: अगर कोई औरत अपने मियाँ की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा, अगर मैं बांदी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
3: ला हौल वला कुव्वत, मियां तुम्हारा भेजा तो सलामत है?
4: जब अब्बा हुजूर तवायफों के हाथ जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती
3: हो। ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
4: जब्बार, अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है। मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूँ मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
3: तो एक काम करो साहबजादे।
4: क्या?
3: जाते जाते मैं मिनहारन बी को भेजे देता हूँ, चूड़ियां पहन के बैठ रहो घर में।
4: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायब बुबू?
1: मुझे नायब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
4: हलीमा,
1: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती
4: है। नहीं हलीमा, हमें तुमसे घिन नहीं। तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई, हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा, तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
1: मेरे अच्छे नवाब।
4: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा, हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो, तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा, रहम करो हलीमा।
1: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल कैसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
4: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
1: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
4: मुझे बांदियों से घिन आती है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा।
1: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज़ भी मुंह से नहीं निकालिएगा। याद नहीं सिकंदर नवाब ने अपने निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
4: कौन सिकंदर नवाब? वो पगले चचा?
1: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कुचों में खाक छानने लगे।
4: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
1: आपके फरिश्ते

0: रिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आंख खोलकर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया, आपकी बांदी बनना मेरे लिए मेराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
1: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे,
0: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
1: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
0: मगर हूँ आपकी।
1: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रख चली जाओ।
0: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
1: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितने सर्द हो रहे हैं।
0: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
1: हलीमा, हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे। तुम हमारी दुल्हन हो, खुदा और रसूल खुदा की कसम, तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा, हलीमा।
2: हर बात की एक हद होती है नायाब। लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई जी का आजार हो गए,
3: अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं।
0: ऐसा ही जुनून था,
3: मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म। तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल जैसी दिखाई देती है।
2: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम।
3: हाँ बेगम, भला इन आंखों से कोई बच सकता है। अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
2: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
3: आ जाएगी, आप देखते जाइए। जी से उतरी के साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
2: तो फिर निगौड़ी को गांव भिजवा दो।
1: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
0: मेरा जी चाह रहा है।
1: हमें छोड़कर चली जाओगी?
0: जल्दी आ जाऊंगी।
1: कितनी जल्दी?
0: थोड़े दिनों बाद।
1: कितने होते हैं थोड़े दिन?
0: यही कुछ 6-7 महीने।
1: 6-7 महीने?
0: आहिस्ता बोलो,
1: हम मर जाएंगे।
0: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर मेरे नौशा बुरी फाल मुझसे न निकाली। अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खिदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
1: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा जान? ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
0: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी। सभी नहीं मर जाती, सनोबर की और बात थी। बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय, मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
1: बच्चा?
0: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
1: मेरे सर की कसम खा।
0: नहीं अल्लाह नहीं।
1: हलीमा, तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
0: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
1: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा।
0: जी।
1: बच्चा कब तक होगा?
0: 6 महीने बाद।
1: अगर रोएगा तो हम पाजी को बहुत डांटेंगे।
0: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
1: तुम गांव नहीं जाओगी।
0: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
1: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
0: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
1: हम इस घिनौने दस्तूर को तोड़ेंगे
0: सरकार।
1: शट अप।
4: घोड़े बचिए हशमत नवाब।
5: ये लीजिए।
4: ये शह वो मारा।
1: भाईजान, मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
5: अम्मा, इस वक्त बड़े जोर की बाती जमी है, खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
1: भाईजान,
5: अम्मा क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
4: शह हजमत नवाब, शह।
1: प्लीज भाईजान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
5: ओफो, कहो क्या कहना चाहते हो।
1: जरा मैं।
5: अम्मा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता।
1: भाईजान,
5: अम्मा कह भी चुको।
1: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है?
4: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार? अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
1: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
4: सरवरी जालिम, पटाखा है पटाखा, है, है, क्या उठान है। अम्मा उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती।
5: अफजल भाई, अच्छा जाने दो, आगे चलो।
1: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा।
5: मियां, ये महल का पुराना दस्तूर है।
1: वो गाय भैंस नहीं, वो
4: कहो कहो, शर्मा क्यों गए?
1: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
5: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो। ला हौल वला कुव्वत।
4: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता, प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
6: भाई जान,
4: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
6: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी।
5: बहुत खूब, वो कब?
6: मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
5: और निकाह? काजी कौन था?
6: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
4: वल्ला, तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
5: जाओ मियां, क्यों वक्त जाया कर रहे हो? हाँ भाई अफजल भाई, दूसरी बाजी जमाएं। ला हौले वला कुव्वत, सारा मजा किरकिरा कर दिया।
6: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनोबर के साथ।
4: जमन मियां, तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती?
6: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
5: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दफा हो जाओ यहां से।
6: भाई जान, मैं
5: बदतमीज।
4: अरे अरे, ये क्या करते हो हशमत मियां? क्या
5: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसी हुई?
4: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई चले जाओ यहां से।
3: बेगम साहिबा, एक बात तो हूँ।
2: कह भी चुको, क्या कह रही हो?
3: नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है,
2: उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी?
3: अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए। फरागत पाकर विलायत जाने के इरादा है?
2: हाँ हाँ, खुदा जीता रखे मेरी लाडली को।
3: आमीन। तो गोद वाले को विलायत संतु न ले जाएंगी?
2: दीवानी हुई हो, वहाँ मुई ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी? खैर से वो मेरे पास ही रहेगा,
3: और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरिंगन फिर ही लग जाएगी।
2: अय है, दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारो पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई?
3: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं, मुंह जले की बात तो सुनिए, आपका नमक खाया है तो क्या मैं?
2: अय बुआ, तो कुछ मुंह से फूटो तो।
3: नजम बिटिया और हलीमा का बस दो चार दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
2: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त मुई को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो।
3: जो हुकुम सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी, यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी।
2: जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी।
3: आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ, साहबजादे भी जिद के पूरे हैं, बस कुछ दिन जाते हैं कि आप ही आप साहबजादे के दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
2: कभी सोचती हूँ नायाब, तुम ना होती तो।
3: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।
2: जरी खासदान आगे बढ़ो।
3: लीजिए, हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं, देखे क्या कुछ पसंद फरमाती है।
2: अच्छा दिखा लाओ।
3: अभी मतन, तुम्हारी बेगम कहाँ है? जाओ जरा अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है।
7: ओहो नायाबू, कहिए महल में सब कैसे हैं? अच्छे तो हैं?
3: जी हाँ, सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया,
7: जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी।
3: लॉन्ड्री तो आपके पास हाजिर हुई थी।
7: क्या है?
3: ये जेवरात पसंद फरमाइए।
7: क्यों?
3: रानी बिटिया, नवाब दुल्हन ने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बम्बई आर्डर जाएगा।
7: मैं क्यों पसंद फरमाऊं?
3: छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए।
7: कौन छोटे सरकार? छम्मन मियां?
3: जी जी हाँ।
7: ओहो, हलीमा बीवी के लिए मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं?
3: क्या फरमा रही है बिटिया, छोड़िए मजाक, ये देखिए, ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा ये, हाँ लाकिट।
7: इसमें मजाक की कौन सी बात है, छम्मन मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीवी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत
3: है? है। रानी बिटिया, क्या फरमा रही हैं आप?
7: क्यों, क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है?
3: खुदा ना करे, हलीमा तो बांधी है।
7: बच्चा तो छम्मन मियां का है ना?
3: बच्चा? कैसा बच्चा?
7: फरखुंदा खाला कह रही थी कि
3: ए बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांधियां इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती हैं।
7: बोलो बोलो, जब्बार की कसम खाकर कह दो।
3: ए बिटिया, आप भी गजब करती हैं, आखिर को नवाबजादे हैं, मगर वो लौंडे बांधी तो जी का बेलावा होती हैं, इन कमबख्तों से शादी ब्याह नहीं होता।
7: तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं? हम नवाबजादियों से।
3: और क्या बिटिया रानी,
7: हशमत भाई की तो एक बांदी थी, क्या नाम था, सनोबर?
2: ये रानी बिटिया, ये

0: बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा।
1: हद से रबड़ो फरखुंदा,
0: मुझे मजबूर ना कीजिए मुमानी जान।
1: क्या मतलब?
0: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
2: पुलिस? या अल्लाह,
1: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गारत हो मेरे सामने से।
0: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
3: नहीं, मैं उठा लूंगा।
0: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
2: ये आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
3: चुप रहो बेवकूफ।
0: कम वक्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो।
3: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है। ये क्या हो रहा है?
0: आदाब मामू जान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
3: हमसे पूछे बगैर?
4: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
3: मर जाने दो।
4: अब्बा हुजूर,
3: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
4: नहीं,
3: तुम्हारी ये हिम्मत? एक जलील बांदी के लिए हमसे गुस्ताखी कर रहे हो? बेशर्म।
4: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
3: क्या बकते हो मर्दूत? हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
4: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
3: तुम्हारे इतने दिमाग?
2: होश में आओ बेटे, मैं मुझे डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
4: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
2: अरे कहाँ जा रहा है छम्मन मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
4: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
2: ना जाओ मेरे लाल।
4: खुदा।
2: ना जाओ मेरे लाल छम्मन।
3: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएगी।
2: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा। मैं उसे जानती हूँ, ना मुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
5: नहीं पप्पू, कैसे हैं चमन मियां के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
6: अरे मेरे कान नखा, मुई छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
1: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है।
6: बेगम बस जान का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत।
1: घर बार कैसा है?
6: है बेगम, कुर्बान जाऊं ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है। बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी के उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छमन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
1: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
7: नाट्य तरंग में अभी आप इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हिमांगनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
8: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
9: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली।
8: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
10: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
8: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
9: तुम्हारी याद सताती है
8: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।